सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बडिया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में, पर जिंदगी में सुकून नहीं है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर रहे थे 9.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: जिला बाड़मेर राजस्थान से रूपचंद गोयल की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें सर जी।
1: नमस्कार सर, आपको, आपके परिवार जनम, समस्त श्रोता जनों को बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं।
0: जो मुझे गीत सुना है, पुरानी पिक्चर है साजन, उसका गीत है। वो गीत है साजन साजन पुकारूं गलियों में।
1: बिल्कुल
0: ये सर, ये गीत फीमेल आवाज वाला सुनाना।
1: ठीक है सर, सुना रहे हैं आपकी परिवार से।

0: रहा हूँ सर आपकी फरमाइश पे। हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलुकेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: इश्क का रोग लगा जोगन को जोग लगा।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश पे, बेहतरीन सा गाना।
1: धन्यवाद सर।
0: धन्यवाद।

तेरा दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। पहली रात को बिल्ली मार लेना, दूल्हे की शरारत से बच के रहना।

0: जब कोई लड़का किसी लड़की के बाल बांध देता है तो वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये यहाँ की रीत है बीबी जी।
1: सर नमस्कार, क्या हाल चाल है आपके?
2: बस बढ़िया यार भाईजान।
1: नाम बताएं सर आपका पहले।
2: शहजाद खान परवाने की जान।
1: शहजाद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: नरगे झोली मेरी आम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश से।

यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुसाया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर।

0: हेलो
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: नाम बताएं आपका।
0: सर मेरा नाम प्रियंका मंगल है।
1: मंगल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: सर मैं रोड से।
1: बताओ कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: सर आजकल ट्रेंड में चल रहा है शीशा सॉन्ग प्ले कर दो।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मंगल जी आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में फोन किया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।

तेरे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: ईश्वर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: हाँ जी मैम नमस्ते।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम अक्षत है, मैं जी आर गारमेंट्स से बात कर रहा हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: जी मैम मुझे एक गाना सुनना है, कोई शहरी बाबू दिल लहरी बाबू।
1: ओके तो सुना रहे हैं आपको फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम।

0: 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़े धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करके लोगों को लुभाते हैं। कई बार वे मशहूर हस्तियों या सरकारी नेताओं के डीप फेक वीडियो बनाकर दिखाते हैं ताकि आपको भरोसा हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति आपको निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाएं। निवेश चाहे शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, सोना या कोई भी हो, गारंटीड रिटर्न का दावा हमेशा धोखा होता है। ठग आपको फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट पर पैसा डालने के लिए कहते हैं। वहां आपको दिखाया जाता है कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन असल में सारा पैसा धोखेबाजों के खाते में चला जाता है। याद रखें, न कोई सेलिब्रिटी और न ही सरकार कभी भी किसी निवेश पर गारंटीड रिटर्न की गारंटी देती है। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो चुके हैं तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। संक्षिप्त और प्रभावी रूप में इस्तेमाल करना चाहें तो बताएं। मैं और छोटा स्लैश और भी आकर्षक संस्करण भी बना सकते हैं।

0: हेलो
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: जी गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर आपका।
1: सर मेरा नाम है ये सलमानी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: चूली के रंगापुर सिटी से।
0: पता है कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: सर? आज गाना सुनना चाहते हैं हमारे दोस्त है सुनील लकेरा जी, उनकी फरमाइश का गाना है, हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने मारा।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आप लोगों की फरमाइश का बेहतरीन। रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस गंगा।

0: नाम बताएं आपका।
1: निशा शर्मा गंगापुर सिटी से।
0: निशा जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: क्या मौसम आया है?
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ निशा जी, आपकी फरमाइश का ही गाना। हेलो
2: हेलो सर, गा के रहे

0: जी नमस्कार, क्या नाम है सर आपका?
1: आशाराम जगह।
0: आशाराम जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सर ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ आशाराम जी, आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: हेलो।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:51 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर आपका।
1: चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
0: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: गाना है सर मेरी जन पिक्चर का है।
0: बताएं गाने के बोल बताएं सर।
1: जीत जाएंगे हम।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी समय।

0: जी नाम बताएं सर।
1: नाम सत्यनारायण।
0: सत्यनारायण जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं रेलवे करौली फाटक।
0: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दोस्ताना को।
0: दोस्ताना का कौन सा गाना है सर?
1: सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे, बेहतरीन सा गाना।

0: जी नाम बताए सर।
1: नाम बाबू खान।
0: बाबू खान जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जगह नहीं देना जी भुला नहीं देना जमाना खराब है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका।

0: TVS FM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो TVS।
2: जी नाम बताएं।
3: हेलो, मेरा नाम है महेंद्र कुमार।
2: महेंद्र जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
3: रेलवे स्टेशन नंगा कोशिश।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: सर हम गाना सुनना चाहते हैं ये राजा का, राजा दिल में पुकारा। राजा दिल में पुकारा
2: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश के बेहतरीन।
3: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: जय किसान नाम है सर।
1: जय किसान जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं गंगापुर सिटी, जीआर गारमेंट्स।
1: अच्छा, बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर मुझे ये मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी चॉइस के बाद।
2: अरे अरे भाई, उदास क्यों हो रहे थे? कितने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं तेरा, वो भी आ जाएंगे।
3: हाय
2: बोलना यार तू भी।
4: अरे गा यार, जय तू भी। क्या गा यार, गाना। अरे गा।

0: सर।
1: राधे राधे सर।
2: राधे राधे, नाम बताएं आपका।
1: नाम मेरा राम सिंह है।
2: राम सिंह जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: हम गंगापुर सिटी नशिया कॉलोनी।
2: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये कटी पतंग मूवी का सॉन्ग है एक, प्यार वो, ये जिंदगी मेरी कटी पतंग, यही सॉन्ग है।
2: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर, आपकी फरमाइश का बेहतरीन।
3: मेरा मतलब है, अगर तुम घर से इस तरह भाग गई तो तुम्हारे मामा तुम्हें बेदखल कर देंगे। माधवी
4: 9.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: जी नमस्ते, नाम बताओ आपका?
1: मोहम्मद यासीन।
0: मोहम्मद जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: पाल से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाने के बोले सर, काले लिबास में बदल।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: पंकज सैनी।
0: पंकज जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? टूली गेट से। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मासूम शर्मा का।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश के बेहतरीन सा गाना।
2: मत्था टेक जाई नाले, सारे देख जाई नाले, छकली पकौड़े।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: बीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
1: साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, एफसीआई गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
2: तो वक्त हो चुका है 11:32 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: हेलो
4: हेलो
3: जी, नाम बताएं सर आपका।
4: सर मेरा नाम ये शर्मा है, मैं लक्ष्य कॉलोनी वार्ड नंबर 9 से बोल रहा हूँ।
3: शर्मा जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस।
4: सर मुझे अपने अमिताभ बच्चन जी की फिल्म थी ना मर्द, उसका एक गाना है माँ मेरी माँ ला लेनी जी।
3: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश का ही गाना।
4: ठीक है सर।

0: हेलो
1: जी, आपका नाम बताएं।
0: चीनू सैनी।
1: चीनू सैनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: लाल सोट से।
1: लाल सोट से। बताएं चीनू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप? हेलो
0: जी,
1: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: बैरी।
1: बैरी?
0: हाँ
1: बिल्कुल, सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का गाना।

0: हाँ जी नमस्कार साहब।
1: जी नमस्कार।
0: ऋषि जी बोल रहे हो क्या?
1: हाँ सर, नाम बताएं आपका।
0: आमीन साहब पिलौदिया।
1: अच्छा आमीन साहब पिलौदिया जी, बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: दिल सच्चा और चेहरा झूठा।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का ये गाना। हाँ।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: आरती।
0: आरती जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: बताएं आरती जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: कभी जाट ले जा रही।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आरती जी आपको, आपकी सुनवाई से।

0: प्रदीप, हम एक नहीं हो सकते।
1: क्यों?
0: क्योंकि घर वालों ने मेरा रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है। तुम मेरे घर वालों को पसंद नहीं हो।

0: तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: हेलो, हाँ मैम, नाम क्या है आपका? पूनम शर्मा, कहाँ से बात कर?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्कार सर,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है सर?
1: मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, नांदेड़, महाराष्ट्र। सर
0: कैसा मौसम है महाराष्ट्र का?
1: मौसम सर अभी थोड़ा बादल छाए वाला है।
0: अच्छा, बरसात हुई या नहीं हुई?
1: नहीं, अब बादल है और धूप है, बरसात तो नहीं होगी सर, और होंगे 8-10 दिन बाद होंगी बरसात।
0: बताओ कौन सा गाना सुनना चाहते हो?
1: बलमा फिल्म का सर।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका।
1: मानसूरिया यही पुकारे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर।

0: बिल्कुल सुना रहे।
1: हेलो हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम बताएं आपका।
1: मेरा नाम तोशी वर्मा है।
0: तोशी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं सुनने का मंगल से बात कर रही हूँ।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: सजन राजी हो चुके।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपका, आपकी समझ पाएगा।

0: हेलो जी, नाम बताएं।
1: जी सर नमस्कार, पुष्कर नाथ शर्मा बोल रहा हूँ।
0: जी पुष्कर नाथ शर्मा जी, बताएं कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल बहुत अच्छे सर, काफी समय के बाद बात हो रही है आपके साथ, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे।
0: जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: गाना सुनूंगा मैं आज पतंगा फिल्म का।
0: पतंगा फिल्म का कौन सा गाना है सर?
1: वो मेरे पिया गे रंगू किया है वहाँ से पहले फोन तुम्हारी याद सताती है।
0: बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गाना है सर, बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।
1: जी तो मैं आपको और सभी श्रोताओं को अपनी ओर से नमस्कार कहना चाहूंगा, और मैं अपने अंकल जी को प्रणाम करना चाहूंगा। मेरे अंकल जी का नाम है जम्मू शिव शर्मा जी है, और उनको और आंटी जी को भी मेरा नमस्कार और प्रणाम आपके माध्यम से।
0: बिल्कुल बिल्कुल सर, और जम्मू कश्मीर का मौसम कैसा है फिलहाल?
1: मौसम सर हमारे यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है, हम तो सोते हैं तो हम कंबल लेकर सोते हैं, ऐसे नहीं सोते हैं क्योंकि हम सर्दी लगती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी समय से।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: मोनिका।
0: मोनिका जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: रेलवे कॉलोनी।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: तेरी गली से घर छोड़ के दूसरे मोहल्ले में घर ले लिया।
0: सुना रहे हैं?

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: तानिया।
1: तानिया जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: चांदनी रात में गुल।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश पे।

0: हाँ सर, नाम क्या है आपका?
1: हाँ जी, योगेश डांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: रब ने बना दी जोड़ी से, चलो आ देंगे।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: नमस्कार दीदी, आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
1: सर नमस्ते।
0: नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है सर, आप कैसे हो?
0: बढ़िया है, बारिश हो गई है आज रात में तो मौसम बढ़िया हो गया।
1: हाँ सर, यहाँ पर भी बारिश ही हो रही है।
0: अभी तो नहीं हो रही दीदी, अभी तो धूप है हल्की। तो देश प्रेमी फिल्म का गाना सुनवा दीजिए आप।
1: जी बताइए सर।
0: खातून की खिदमत में सलाम होगा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

पकड़े तो तूने दांत ऐसे नपो ऐसे बता।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: रमीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नशिया कॉलोनी नंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मैं बहुत दिला दूँ मैं घोड़ा पर्वत का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, पर ये गाना

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो,
3: हाँ जी, राधे
2: राधे राधे सर, नाम क्या है आपका?
3: निरुपम ठाकुर।
2: कहाँ से बात कर रहे
3: हो? महोकला।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: गाना वो क्या नाम है, मैंने कॉल किया था है? मैंने वो क्या नाम है, नाम और निरुपम था, क्या नाम है,
2: कौन सा
3: फूल और कांटे का है ना गाना?
2: ओके, सुना रहे आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम लक्षिता वर्मा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: संधि कॉलोनी गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: मैम मुझे वार्निंग गाना सुनना है, मासूम शर्मा का।
1: मासूम शर्मा का
0: वार्निंग सॉन्ग।
1: वार्निंग?
0: यस मैम। थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: निकिता।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: रेलवे स्टेशन।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: तुझे से बिछड़ के, जिंदा।
1: ओके मैम।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद ले रहे हैं रेडियो डीएस पर। दोस्तों अभी आपने सुना हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अब थोड़ी ही देर में यानी 1:01 पे आप सुनेंगे नए तराने कार्यक्रम। कीजिए थोड़ा सा इंतजार। दोस्तों नए तराने कार्यक्रम में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद नए नए गाने और कुछ खटी मटी बातें। चलिए दोस्तों कार्यक्रम का श्री गणेश यानी शुरुआत करते हैं हम एक बेहतरीन और प्यारे से गीत के साथ। इसके बाद में सुनेंगे एक भेंट वार्ता।

बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:12 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने। दोस्तों नए तरानों के बीच में कुछ भेंट वार्तालाप

0: प्रिय श्रोताओ, मेरा नाम है मेनका कुमारी शर्मा। आप सुन रहे हो अपना एक प्रिय कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है। विषय है आज की महिला जागरूक और तकनीकी शिक्षा में उसका बढ़ता वर्चस्व। 21वीं सदी को विज्ञान, तकनीक और नवाचार का युग कहा जाता है। आज दुनिया तेजी से डिजिटल होती जा रही है। कंप्यूटर, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग और अंतरिक्ष विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। ऐसे समय में भारतीय महिलाएं भी पीछे नहीं है। वे न केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही है बल्कि इन क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रही है। एक समय था जब तकनीकी शिक्षा को केवल पुरुषों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन आज महिलाएं इस सोच को बदलते हुए हर तकनीकी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का मनवा ले रही है। आइए जानते हैं तकनीकी शिक्षा का महत्व। तकनीकी शिक्षा वह शिक्षा है जो व्यक्ति को विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, चिकित्सा, मशीनरी और आधुनिक उपकरणों के ज्ञान से जोड़ती है। तकनीकी शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होता बल्कि नवाचार, शोध और समस्याओं के समाधान की क्षमता विकसित करना भी होता है। आज के युग में तकनीकी शिक्षा के बिना किसी विकास की कल्पना करना कठिन है। आइए जानते हैं महिला किस प्रकार जागरूक होती है अपनी पहचान के प्रति। आधुनिक महिला केवल परिवार तक सीमित नहीं है, वह शिक्षित, आत्मनिर्भर, जागरूक और तकनीकी रूप से सक्षम बन रही है।
1: सुनते आज की दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

बोलो। नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रियंका मंगल, आप सुन रहे हैं रेडियो DS 89.6 पर हमारा विशेष कार्यक्रम भारतीय समाज में महिला और पुरुष का स्थान तथा समाज पर उनका योगदान। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज हम

0: एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो भारतीय समाज की नींव से जुड़ा हुआ है। विषय है भारतीय समाज में महिला और पुरुष का स्थान तथा समाज पर उनका योगदान। मानव समाज की रचना महिला और पुरुष दोनों के सहयोग से हुई है। जिस प्रकार एक पक्षी दो पंखों के बिना उड़ान नहीं भर सकता, उसी प्रकार समाज में महिला और पुरुष दोनों की समान भागीदारी के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक है और परिवार समाज तथा राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय समाज की संरचना। भारतीय समाज विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। यहाँ परिवार, संस्कृति, परंपरा, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। भारतीय समाज में महिला और पुरुष दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं रही हैं। समय के साथ इन भूमिकाओं में परिवर्तन आया है और आज दोनों हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं। प्राचीन भारतीय समाज में महिला का स्थान। प्राचीन भारत में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा, ज्ञान और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार था। इतिहास में अनेक विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा। इन महिलाओं ने ज्ञान, दर्शन और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय महिलाओं को समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें परिवार की धुरी माना जाता था। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति। मध्यकाल के दौरान सामाजिक परिस्थितियों और बाहरी आक्रमणों के कारण महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आई। बाल विवाह, पर्दा प्रथा और शिक्षा से वंचित होने जैसी समस्याएं बढ़ी। फिर भी अनेक महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और साहस का परिचय दिया, जैसे रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होलकर। इन महिलाओं ने समाज और राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिक भारत में महिला का स्थान। आज भारत की महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, चिकित्सा, खेल, सेना, प्रशासन, उद्योग और तकनीकी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। आज महिला डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक, पायलट, प्रशासक व उद्यमी है। यह परिवर्तन शिक्षा और जागरूकता के कारण संभव हुआ है। भारतीय समाज में पुरुष का स्थान। भारतीय समाज में पुरुषों को पारंपरिक रूप से परिवार का संरक्षक और जिम्मेदार सदस्य माना जाता रहा है। पुरुष की प्रमुख भूमिकाएं रही हैं। परिवार का भरण पोषण, सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक नेतृत्व, आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी, राष्ट्र निर्माण में योगदान। हालांकि आज के समय में पुरुष की भूमिका केवल आर्थिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार और बच्चों की देखभाल में भी सक्रिय भागीदारी निभा रही है। परिवार निर्माण में महिला और पुरुष की संयुक्त भूमिका। परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है। एक परिवार तभी सफल बनता है जब महिला और पुरुष दोनों मिलकर जिम्मेदारियां निभाते हैं। महिला बच्चों को संस्कार देती है, परिवार में प्रेम और भावनात्मक संतुलन बनाए रखती है। पुरुष सुरक्षा और सहयोग प्रदान करते हैं, आर्थिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। आज के आधुनिक परिवारों में दोनों की साझेदारी और सहयोग पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। शिक्षा समाज की प्रगति का आधार है। आज महिलाएं और पुरुष दोनों शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। शिक्षक, प्रोफेसर, शोधकर्ता और शिक्षा प्रशासक के रूप में दोनों समाज को नई दिशा दे रहे हैं। एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित बनाती है, जबकि एक शिक्षित पुरुष समाज के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। आर्थिक विकास में योगदान। किसी भी देश की आर्थिक प्रगति में महिला और पुरुष दोनों का योगदान आवश्यक है। आज महिलाएं बैंकिंग, उद्योग, व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वरोजगार जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। पुरुष भी इन क्षेत्रों में निरंतर योगदान देकर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। कृषि क्षेत्र में महिला और पुरुष, भारत कृषि प्रधान देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं और पुरुष दोनों कृषि कार्यों में समान रूप से भाग लेते हैं। महिलाएं बुवाई, निराई, कटाई, पशुपालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और पुरुष खेतों की तैयारी, सिंचाई, विपणन और अन्य कार्यों में योगदान देते हैं। दोनों के संयुक्त प्रयासों से कृषि उत्पादक संभव हो पाता है। राजनीति और प्रशासन में भूमिकाएं। आज महिलाएं राजनीति और प्रशासन में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने ग्रामीण नेतृत्व को नई दिशा दी है। महिलाएं सरपंच हैं, जिला प्रमुख, विधायक, सांसद और मंत्री के रूप में समाज की सेवा कर रही हैं।
1: दोस्तों 1:20 का समय हो चुका है। फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडिया गंगापुर सिटी का तड़का पर। फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने। दोस्तों बातचीत बहुत ही सुनते रहेंगे, सुनते हैं एक नया ट्रैक और मिलते हैं ट्रैक के बाद।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: पुरुष भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में योगदान, वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। महिलाएं वैज्ञानिक, इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नई उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। पुरुष और महिलाएं मिलकर देश को डिजिटल और तकनीकी रूप से मजबूत बना रहे हैं। समाज सुधार में योगदान, भारतीय समाज में अनेक सामाजिक सुधार आंदोलनों में महिला और पुरुष दोनों के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बाल विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा, लैंगिक भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध दोनों ने मिलकर संघर्ष किया है। आज भी समाज सुधार के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। समानता और सम्मान का महत्व, आधुनिक समाज में महिला और पुरुष को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी माना जाना चाहिए। समानता का अर्थ ये नहीं कि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बल्कि इसका अर्थ है समान अवसर, समान सम्मान, समान अधिकार, समान भागीदारी। जब समाज महिला और पुरुष दोनों को बराबरी का सम्मान देता है तब विकास की गति तेज होती है। वर्तमान चुनौतियां, हालांकि काफी प्रगति हुई है फिर भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं। लैंगिक भेदभाव, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, बाल विवाह, शिक्षा में असमानता, कार्यस्थल पर भेदभाव, इन चुनौतियों का समाधान समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। राष्ट्र निर्माण केवल सरकार का कार्य नहीं है बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। महिला और पुरुष दोनों शिक्षा को बढ़ावा देकर, सामाजिक सद्भाव बनाए रखकर, पर्यावरण संरक्षण करके, कानूनों का पालन करके, बच्चों को अच्छे संस्कार देकर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। निष्कर्ष, भारतीय समाज में महिला और पुरुष दोनों का स्थान समान रूप से महत्वपूर्ण है। दोनों एक दूसरे से पूरक हैं और समाज की प्रगति के दो मजबूत स्तंभ हैं। परिवार से लेकर राष्ट्र निर्माण तक हर क्षेत्र में उनकी साझेदारी आवश्यक है। एक विकसित, समृद्ध और सशक्त भारत का निर्माण तभी संभव है जब महिला और पुरुष दोनों का समान सम्मान, समान अवसर और समान भागीदारी मिले। आइए हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां महिला और पुरुष दोनों मिलकर विकास, समानता और मानवता की नई मिसाल कायम करें। धन्यवाद। नमस्कार।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
2: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
1: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
2: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
3: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और

0: कभी जो मेरा था अब किसी और का है, ये दिल भी अब बस दर्द का घर सा है। तू लौट के आएगा इस उम्मीद में, हर रोज ये दिल थोड़ा मर सा है।
1: मन से उतर रहे हैं
0: दिल में रहने वाले लोग, अब बस जख्म बन गए हैं वो सारे लोग, जो कभी मेरी हर धड़कन में थे आज बस

0: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो DS साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें। कॉन्टैक्ट नाउ DS साइंस अकेडमी 8302611149 या 9413163680। DS साइंस अकेडमी, कॉन्सेप्ट क्लियर, फ्यूचर ब्राइट।
1: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026, शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27, क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर, एन नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111, इसके अलावा 9462744762।

0: चल। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे भूली बिसरी यादें कार्यक्रम 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:05 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों जो अभी आपने गाना सुना था उसका मूवी का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की। म्यूजिक डायरेक्टर है लता कांत लक्ष्मीकांत फाइला। सिंगर का नाम है लता मंगेशकर आशा घोषला।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: दोस्तों अभी आपने सुना भूली बिसरी यादें कार्यक्रम में, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे साथ बैक टू बैक गानों का अगला कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल आप ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना,
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो ओडीएस।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू वे गाने का। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS गंगापुर सिटी के हर कोने में अब।

दोस्तों अभी आपने सुना राजस्थानी कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के साथ आप आनंद ले रहे हैं रेडियो डीएस पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं मथुरा से आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिंह मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गाना आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, तेरी मासूमियत ने हमें वंजारा बना दिया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके थैंक यू, टेक केयर, हैव नाइस डे, बाय।
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुलशन।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर
1: सिटी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
0: दीवानी मूवी में ही आ गए।
1: क्या मैम?

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम बताएं।
1: सवाई माधोपुर से बोल रहे हैं सर। मोनिका,
0: मोनिका जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
1: आप? पत्थर के सनम हमने तुम्हें।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुना रहे हैं मैम आपकी फरमाइश का ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल किया, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम सिंधु के रास्ते।
0: फिर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सरकती जाए है रुख से नकाब।

0: सर, नाम क्या है आपका?
1: अंडे राम गुजर बोल रहा हूँ, नाम गजलता से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना ये बहन जी, यही तो हमको जीना है, यही तो हमको मरना है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: यू वेलकम सर।

0: हेलो
1: नमस्ते
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम चौधरी, निवेदन कर रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: गाना जी की बढ़िया लाए हैं।
0: हाँ जी बताइए।
1: देखो
0: हाँ जी,
1: इधर जिंदगी का
0: कौन सा सर?
1: इधर जिंदगी का जनाजा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रिकॉर्ड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तेरे ख्यालों में तेरे ही ख्वाबों में दिन जाए ना भी।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर।

0: हेलो,
1: नंबर ले लिया हमारा।
2: अमीर गंगापुर से बोल रहा हूँ।
0: जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना है तू प्यार का सागर है।
0: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 5:06 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग मैम
0: जी। नाम क्या है आपका?
1: निशा शर्मा, गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: क्या मौसम आया है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ही गाना।
1: थैंक यू मैम।
0: यू वेलकम।

0: सराज से।
1: नाम क्या है सर आपका?
0: नाम मैं उमेश मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कलम।
1: कौन सा?
0: कलम कलम
1: कलम।
0: यस मैम।

0: हेलो
1: जी, नाम क्या है आपका?
0: मीनाक्षी।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: रेलवे स्टेशन।
1: कौन से काम के लिए करेगी?
0: देखो जी, मेरे दिल पर रखनी चाहिए।
1: देखिए, मैं सुना रहा हूँ आपकी फरमाइश पर।

0: सिटी की धड़कन रेडियो डीएस, रेडियो डीएस।
1: जल्दी चलो, लेट हो गए। ले भाई चाबी।
2: सर, ऑन स्टेज 5 मिनट्स।
1: ओके, तुम्हारी मैं जाऊं। लगता है रूम में रह गए।

0: देखो, एक होता है सही समय, एक होता है गलत समय, और एक हो रहा है अभी का समय जो 9:15 से ऊपर है या नीचे, मैं नहीं बताऊंगा, खुद से अपनी घड़ी चेक करो, चेक करो, चेक करो। इससे पहले आपने गाना सुना क्या लोगे तुम, बीपराग की आवाज में। लिरिक्स लिखा था जानी ने और कॉम्पोजिशन भी जानी ने, लेकिन बीपराग, बीपराग, बीपराग। जब फिल्म एनिमल का ट्रेलर आया था तो उसमें एक बहुत ही शानदार सीन था जहाँ पे रणबीर कपूर और अनिल कपूर वो एक्ट कर रहे होते, जहाँ रणबीर कपूर कहते कि मैं आपकी एक्टिंग करूंगा, आप पापा हो मेरे, और फिर वो डायलॉग आता है, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। तो जब भी मैं बीपराग के गाने सुनता हूं मेरे को वो सीन याद आता है कि सुनाई दे रहा है। इसी बात पे चलो, तीन गाने बैक टू बैक आपके लिए।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो।

0: जसमीन नौटियाल असीस कौर की आवाज में आपने गाना सुना राता लंबिया। लिरिक्स और कॉम्पोजिशन तनिष्क बागची भैया ने लिखा है। वैसे हाँ, फिलहाल मेरा समय हो चुका है जाने का, टाइम टू गो। कल मिलेंगे सुबह 9 से 10 पर। आप कहीं मत जाओ, बने रहो हमारे साथ, गाने सुनो 89.6 रेडियो DSP।
1: गंगापुर सिटी की धड़कन।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। आज सफरनामा में मैं आपको हिट फिल्म्स की दिलचस्प बातें बताऊंगी। अगर आप बॉलीवुड फैन भी हैं, तो भी आपने इन बातों पे कभी गौर नहीं किया होगा। चलिए लौट के आऊंगी और बताऊंगी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा।
1: गंगापुर सिटी की धरती।
2: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

जवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। एक बात बताओ, आप आंखें झपकाए बिना रह सकते हो क्या? नहीं ना। लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि पी के फिल्म में, जो मेरी सबसे फेवरेट फिल्म है, उसमें आमिर खान ने आंखें बिल्कुल भी नहीं झपकाई है। विश्वास नहीं है, वापस जाके देखो। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
1: गंगापुर सिटी की धड़कन, रेडियो रियल।

0: वक्त से टिकट भर कर
1: बॉलीवुड फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग बात, सिलसिला एक ऐसी अकेली मूवी है जिसमें शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन के बड़े भाई का रोल निभाया है। बाकी जितनी भी इनकी फिल्म्स हैं जिसमें ये सिबलिंग बने हैं, सभी में अमिताभ बच्चन वो हैं जिन्होंने बड़े भाई का रोल निभाया है। चलिए सुनते हैं ऐसी ही कुछ फिल्म्स के खूबसूरत गीत। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: गंगापुर सिटी की धरती पर

0: दो हमको, जाने भी दो।
1: क्यों भूखे हो तुम?
0: नहीं भूखे हैं।
1: हमें खाओगे?
0: नहीं खाएंगे।
1: तो फिर भागो भागो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: गंगापुर सिटी की धरती।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: देखो देखो देखो, जो गाना भी आपने सुना है वो बड़ा ही प्यारा गाना था, लेकिन उससे भी प्यारे आप हो क्योंकि आपने ट्यून इन कर रखा है 89.6 डीएस। और एक फैक्ट बताना चाहूंगा मैं कि हमने सुन रखा है घड़ियाल के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, और हमने देखा भी है, लेकिन हमने क्या नहीं देखा है, क्रोकोडाइल, घड़ियाल के जीभ। और ये फैक्ट है कि क्रोकोडाइल्स जो है, मगरमच्छ जो है, वो अपनी जीभ बाहर नहीं निकाल सकते। मैं खुद से नहीं बना रही, ये वाकई में फैक्ट है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आप अपने बुआ जी, अपने मौसी जी, अपने रिश्तेदारों की जितनी भी बुराई कर लो, जितनी भी बार कह लो कि भैया उनकी जो जुबान है वो कैंची की तरह चलती है, भले ही चलती हो, लेकिन एक बात तो प्रूफ हो गया, क्या, कि वो क्रोकोडाइल्स नहीं है। हंसो मत मेरी बात पे। चलो, आपके लिए मैं चार अमेजिंग गाने बैक टू बैक प्ले कर रहा हूँ 89.6 रेडियो डीएसपी।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: நன்றி நமஸ்காரம்
1: अरे अरे अरे अरे भैया सांस तो ले लो, ट्यून इन कर रखा आपने 89.6 रेडियो डीएस और हम गुनगुनाते हैं। कई बार हम गुनगुनाते कैसे? अच्छा आपको नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ, चलो ध्यान से सुनो। आँख में कैसी, बस बस बस बस बस इतना काफी। अब फैक्ट ये है भैया कि गुनगुनाना तो सही है, लेकिन अगर आप अपनी दोनों उंगलियां लेके अपने नाक को बंद करोगे, चलो करो करो करो, दोनों उंगलियां पकड़ो, नाक को बंद करो, मुंह से सांस लेना बंद करो और उसके बाद गुनगुनाने की कोशिश करो तो गुनगुना नहीं पाओगे। लो मैं करके सुनाता हूँ। बस बस बस भैया सांस तो ले लो, फिलहाल गाने सुनो। प्ले करता हूँ मैं आपके लिए बैक टू बैक चार गाने।
2: गंगापुर स्थिति की धरती।

0: यार आप बहुत ही ध्यान से गाने को सुन रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार ध्यान से मैं अगर दो लाइन पेश कर दूं तो वो भी आप सुनेंगे। तो हाँ सुनो, ध्यान से पेश करता हूँ आपके खिदमत में अलविदा। अलविदा कह ही देते जाते वक्त, अलविदा कह ही देते जाते वक्त, कब तक एतबार करते रहे हम। और नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा, मत मनाओ गम भैया, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आज का शो यही तक था और वापस से कल मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह, कहाँ, रेडियो डीएस 89.6 पे।
1: गंगापुर स्थिति की धरती, रेडियो डीएस।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ। वक्त तो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट सफरनामे का। हिंदुस्तानी सिनेमा में अनेक अभिनेत्रियों ने अपनी भावपूर्ण अदाकारी से खास पहचान बनाई है, लेकिन ट्रेजेडी क्वीन सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी कहलाई। दर्द की देवी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, पर सिने प्रेमियों के जहन में वो आज भी जिंदा है। 89.6 DSFM पे मैं तनीषा आपके साथ।
0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।

0: इश्क भी आरा करके देख लिया, जिंदे जी भी मर के देख लिया, घूट सबर का भर के देख लिया, ई बढ़िया में खून नहीं है, सब कुछ पा लिया जिंदगी में पर जिंदगी में सुकून नहीं है।
1: सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI